0: गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया। गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरान ऊचे ते ऊचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी।

जैसा बालक पाए सुबाई, लख अपराध कमावे, कार्य उपदेश चिड़के बो पांति, बोहड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श ले,

राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौन दयावै ताई सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी।

प्रभु स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय, धन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास भय साहिब के,

है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

0: सिमरन दुश्मन डरे,
1: रब सिमरन चित बिगड़ न लागे,
0: रब के सिमरन ना दिन जागे,
1: रब के सिमरन को न व्यापे,
0: रब के सिमरन दुख न संतापे,
1: रब का सिमरन साध के संग,
0: सर्व निदान नानक का रंग,
1: रब के सिमरन ऋषिद नो निद,
0: रब के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्भुत,
1: रब के सिमरन जप तप पूजा,
0: रब के सिमरन विनसे दूजा,
1: रब के सिमरन तीर्थ स्नानी,
0: रब के सिमरन दरगे मानी,
1: रब के सिमरन होए सुफला,
0: रब के सिमरन सुफल फला।

जय मात पिता सुत मीत ना पाई, जय मां ब्यां दू जम दले, जय मुश्किल होवे अत पारी, अनक पुने चरण करत नहीं तरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखी।

கடசாஸ்தர் சிம்ரவக்யான் சதத்யாக் வண்மதே பிரியார் உந்தானோ மே பருதனா வாக்கினே கரே பாபாதி நானே குர்முக்னா ஜப்பி ஏக்வார் மாகராஸ் பிசர் பிவே கனகசவ புந்தான் ज्ञान मार्ग संयम मत साधन तो भी हमने मैं न जाए ज्ञान गुरमुख नाम जप जत पाए गर्भ गुमान मनते उठे मन की मैं न तनते जाल मन तो कबू न बिकिया टरे शुद्ध काव का ची पीत नानक नाम करे पतित बमूचे अनेक जतन कर तृष्णा त्रापे कोटि पाप दर्गे नहीं सिंजे मोहि व्यापे माया जाल गोविंद पल में तो नहीं माने नानक बोले सहस भाई साजना की सेवा लागे हरे नाम रस सत गावे सत्संग हमें छोरे साजना की जननी परे नानक ताके बल बल जासा सत्संग का मिटे अभिमान सूतनी सत्य उचा हरा नाम तिन कट कट जीना पेके सकल श्रेष्ठ साध

0: नाजु अस्थिर कर माने
1: दूर कराने
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संसारी किस पर हरे
0: चंदा लेप उतारे तोए
1: प्रीत पसम संग होए
0: आंध घूमे पद बिकराल
1: नानक कर ले प्रत्याल
0: दूध पशु की मान जात
1: चारा करे दिन रात
0: बार पे खंतर मल माया।

सुखम मन बुटा सर्व तो ज्ञान के तिन पाया साथ भी करते न दुरास अज्ञानी मन रोष करे और उसका विश्वास न होवे।

संसमोतन वीरा साधक संगे ऊपर जतन नानक साध की शोभा ब्रह्माय समानी साध के संग सदा पर मुले साध संग अमृत रस कुंजा साध के संग मनोहर बैन साध संग अस्तित्व मन पावे साध संग नानक प्रभु सुपर सन्न है।

सार्थ संग सदा सुख पावे, साधु के संग जन सहे, साधु के संग महल पहुंचे, सार्थ संग केवल पार ब्रह्म, नारंग साधु के दरबार, सार संग साधन मिल कुटम निस्तारे, जिस तन ते सबको वर्षावे, सार के संग शोभा सुरदेवा, सार संग अमृत गुण गायन, नानक सार के संग सफल जनम, दर्शन पेट रोत निहाल, सार के संग नरक पर हरे, सार संग बिछड़त अर मिला, सार के संग न बिरथा जावे, नानक उतरे सार सुन रसे, सार संग हर के गुण गाओ, सार संग सर पर निस्तर है, साधु के संग हर गड़ीला, सार संग हर पई हमारी, नानक सार पेटे संयोग, जेता सुने तेता रुद्याने, सार की उपमा रही भरपूर, सार की शोभा सदा व्यंत, सार की शोभा मुझसे मुझी।

0: जैसे जग में कमल लेप, जैसे सुसर्ग को सोत, जैसे राज रंग को लागे दुर्गवान, जो पसुता को खोते को चुनल लेप, नानक जो पाव का सह सलाओ, जैसे मैं लगाते जला, जैसे दारुण को रकास, रंगानी के नायल मान, मन अपने असल ते नीचा, नानक जिन प्रभाव करे, आत्म रस रंगानी जीना, रंगानी ते कछ पुरा ना प्या, रंगानी के दृष्ट मल वर्षी, रंगानी के निर्मल जूता, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्मज्ञानी लेता उत्पन्दा, ब्रह्मज्ञानी सफल फला,
1: नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सकल संसार,
0: ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रसंग, ब्रह्मज्ञानी के नाम प्रभार, ब्रह्मज्ञानी अमृत जागत, ब्रह्मज्ञानी के दर्शानंद, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी एक संगीता, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी के सर मनमाए, ब्रह्मज्ञानी को सदा देश, ब्रह्मज्ञानी सर्व का डाकर, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार,
2: श्रेष्ठ का कर्ता,
0: ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पूर्ण विदाता, ब्रह्मज्ञानी का सब परात,

प्रगट राजा। प्रभु अब कीरत में आवे जर पर राखे तिवी रहे। प्रभु ओए पंडित करे बखान प्रभु तट तीरथ स्नान। प्रभु कीट हस्त पतंग जिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे। ज्योतिष पावे सोई होए प्रभु सा संगत हो पावे। अंतर होए ज्ञान प्रकाश मन तन नाव रते करंग। जो जल में जल आए खटाना।

0: दुख नार जागटे
1: संत के दुखन जानते नहीं छूटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मतो ए मलीन
1: संत के दुखन शोभा ते हीन
0: संत के हते को रखे ना कोई
1: संत के दुखन तान प्रष्ट होए
0: संत के पाल कृपा जे करे
1: नानक संसंग दिन जबी तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के
2: दुखन काग जो लवे
0: संतन के दुखन सर जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिज जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच नी जाए
0: संत दुखी का थाव को नाए
1: नानक संत पावे तो ए भी गत पाए
0: संत का निंदक मात ताई
1: संत का निंदक ठीक गन पाए
0: संत का निंदक मात यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राते ही
1: संत का निंदक दिखवर दीन
0: संत के निंदक सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा विजोग
0: संत की निंदा दोख में दोख
1: नानक संत पावे तो उसका भी ओई मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का

0: करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: प्राप्ति उस्तत करो दिन रात
1: सत्या वो सास ग्रास
0: सब कच बाते तिसका किया
1: ऐसा सिंह ऐसा को किया
0: अपना खेल अब करने हार।

0: पूजा सरसर से नाम सरसर से हार
1: आपे गुना पे गुणारी
0: सत सत सच सुनता नानक सत सत कर सोई
1: करत राम ते मूल पहचानिया
0: तत ज्ञान दिस मन प्रगटाया।

0: सेवकिलकिनकार नानुचो सेवक सास मारे अपने सेवक की सरकार आते अपने सेवक को नाम जपाई ताकि जग में कोई न लाते रखते सेवक ऊंचे ऊंचे नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया पसुम करे लश्कर कोट लाके ताको राख देकर हाथ
1: जिसके कर्तव्य थे जात
0: सर्व जिया का राखा सोए जब नानक ब्रह्म लग बनानी पिये मृते मन तंत्र पिये तिसके सब नाई दुष्टाया नाम सुखर नाम का संग है।

प्रगपने का गुण बुझाने, इसका गुण का एक न जानो, कौन नानक से जन पूरे मंथन अपना तीन जन दे, सोजन सर्वतो का दाता, तिसके दर्शा पा मिटा।

0: Yat.
1: Kargil Vade Vohar Nama.
2: Padra Meri Sardar Pura. Sa Sa Sa Tumhe Tiyavu.
1: Padra Prabhi Nidrita. Nath Mange Naam Pramsar.
2: Haras Pave Birla Koye. Puran Bokhne Dolane.
1: उपजे जाओ साध के संग अंतर प्रकाश अंदर लिवलाग
2: नानक नार तेस कोई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: सेवकी नो सदा निहाल

स्वात तमार्थोपम देव्यापद तमोकांति सोवद परमा नाने करने आन दूजा तबन मुत को किसको गनी तब नरक स्वर्ग को कौन उतार तब तब कौन डर कौन कर डरे नानु ठाकुर रघुम पार ते जन मन को का विनाशन तो जन की त्रास गाँव के सोई तब चित्रगुप्त किस पोषण लेखा तब कौन सुटे कौन बंधन वादे नानक अपन रूप आपी पटा तब मैल क्या क्या दोता ते कौन को मान कौन अनुमान ते संचित लग कुमीज ते किसे भूखा न तृप्ता है नानक ते का नहीं सुमार तब माय बाप मित्र सुख पाई तब वेद के देव का को चीन तब जन अवसन का विचारे तब कौन टालू का कही है चेरा कानक अपनी गर जानो आप हुआ किसे भी आपत माया तेम गुण का नाई परवेश है तब कौन चिंत किस लाग गया चिंता तब कौन कथे कौन सुनने आया नानक आपस को आप पहुंचा तेह गुण में की नो विस्तार को नर को सर्ग तुम चावत हम मैं मो परम पैपार अनेक प्रकार की योग ख्यान खेल संकोच तो नानक के जय सर सार संत प्रताप उनकी शोभा नो बनी आपके रस जोगे

0: संगतर प्रवनीता
1: हम प्रभु कला गमिता
0: सगल समिग्री एकस कटमाए
1: अनुकरण नन दृष्टाए
0: नौने नवर प्रभु का नाम
1: देहि मैं इसका विश्राम
0: सुन समाधान तैनाद
1: कहन जाइयो चर विस्माद
0: इन देखे अज साफ दिखाए
1: नानक तिजन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बार अनंत
1: कटकट गया प्रिया भगवंत
0: तन माया काज पया
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: वंदन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा करम
0: कौन पानी बे संदर माए
1: चार कुंड तक से समाए
0: तेते पे नहीं कोटाओ
1: रूप सा मन सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख
1: सस्य सुन कतर मैं एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आप डोलना कबू डोले।

0: सर्वव्यापी राम संग रचन सत्य साधु सब कहते
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन प्रांत
1: अंतर वसे बार भी होई
0: नानक दर्श देख सम होई तिस पावे सभी युत बात तिस पावे का एक अंकार तिस पावे

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव पदित सोदरा गुरुदेव शान सद बुद्ध मूरत गुरुदेव पांच पंच परा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पदित पवित करा गुरुदेव।

0: फेर बचाया फेर वाण सतगुर का डोर फेर बचाया फेर वाण सतगुर का डोर
1: पोता
0: परवान
1: जिन समुद्र

करवाना डोले पर्वत में राण क्या सराई सच्चे पाशा जादू सुगुण सजान नानक

0: मोरो परवारा सेव सिख सबे करतारा कर दे करिए सब
1: बैरन को आज संगरिया
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
1: जो भर जाऊं से तुमसे पाऊं
0: सेवक से कर मारे तारिये चुन चुन सदर मारे मारिये
1: काल का त्रास निवारिये
0: पूजो सदा मारे बच्चा से

0: सकल प्रजा जिन आप सवारी
1: शिव गण को सब गण जगदी हो चतरण गोपाल मोहवत की हो
0: अंतर की जान भले पुरे
1: चीटी दे कुंजर सूला सब पर कृपा देश कर भूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साथ
1: एक एक की पीर पहचाने गट गट के पट पट की जाने
0: जब दरक करा करता रा प्रजा तर तब दे
1: जब गर्ग कर तो काबू तुम में मिलते दे तर सबून
0: तारे आप अपनी भूल उचारे
1: तुम सभी तेरे तनरालम जानत भेद भेद रालम
0: आद अनिल अनाद संभु
1: ताका मूड़ जात वेदा जाको पेव न पावत वेदा
0: कृपाहन अनुमानत मा मूड कछ भेद न जानत
1: मा देव को कह सदा शिव निंकार का चिन्हित ने पेवहा
0: अपनी उदय जेती हरन प्रेम बिन तू ही देती
1: तुमरा रखा न जाए पसारा कैव सजा प्रथम सारा
0: रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव की कृपा
1: अंड जेर से तजगिनी उत्पज गान वर दिनी
0: राजा हो बेटा को सिमट जो शंकर कहता
1: सिंगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आज गास रूप स्वंभव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रो
1: दुष्ट जिते उठ वदत पाता सकल मनेश करो रणकाता
0: हे अस्तु तब सरनी पर

0: अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता किलबिक सकल देखो आता
1: दुस्लोकन
0: श्री अस्तु जपे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला दुख ना दिसे व्यापे

नामान्यो सिमरत सासर वेद सवेंगो पेद गए अमेक न जान्यो श्री अस्वान कृपा तुम्हारी कर नैना के हो सब।

कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन बिद उस दत्त करिए सिद्ध साधिक तैतीस कोर तिर कीम ना परिए ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अगोग्यो नहीं जाए पूर सब रयो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।

सच सोचा सोच न होवई जे सोची लखवार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार केव सचिया राहो।

0: गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर देहे कथना कथीना वै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट
1: देंदा दे लंदे थक पाए।

0: नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रयासमाई
1: गुरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई
0: जे हो जाना आखा नाही कहना कथन जाई
1: गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
0: तीरथ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी
1: जीती से

0: सर्वरमाइंद सुने मुक्सलान मन
1: सुने जोग जुगत तन पेद सुने सासत सिमरत वेद
0: नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नाश
1: सुने सत संतोख

0: को कहे पिछे पछताए,
1: कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बै करन विचार।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए,
1: मन्ने सुर तो है मन बुद्ध, मन्ने सकल पवन की सुध,
0: मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए,
0: मन्ने मारक ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों पर गट जाए,
1: मन्ने अगना चले पंत, मन्ने धर्म से तीसन बंद।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई,
1: मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार ऐसा दार,
0: मन्ने तरह तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिख।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई,
0: पांच परवान पांच परतान।

0: निरंकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख जप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता
0: असंख

0: निरंकार
1: असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम कोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंगल वड त्या कमाहे
1: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे
0: असंख मलेश माल पाख खाए असंख निंदक सिर करे पार
1: नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार
0: जो तुत पावे सही पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख नाम असंख था गम अगम असंख लो।

0: देवड पावै देवड होए, नानक जाने साचा सोए।
1: जे को आखै बोल बिगाड़ तां लिखिया सिर गावारा गावार।
0: सोदर के हा सो कर के हा, जित बह सरब समाले।
1: वाजे नाद अनेक असंखा के ते वावन हारे।
0: के ते राग परी सियो कहियन के ते गावन हारे।
1: गावे तोहनो पौन पानी पैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे।
0: गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे।
1: गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे।
0: गावे इंद्र इंद्रासन बैठे, देवत्या दर नाले।
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे।
0: गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पढ़न रुखी, सर जुग जुग वे।

0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई।
1: हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई।
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई।
1: कर कर वेख कीता अपना ज्योतिस दी वड्याई।
0: ज्योतिस पावे सोई कर से हुकम न करना जाई।
1: सो पात साहो साहा पत साहिब नान करण रजाई।
0: मुंदा संतोख सरम पचोली ध्यान की करे विभूत।
1: खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत।
0: आई पंथी सकल जमाती

0: काढ़त करिए बहुत अनूप।
1: ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए।
0: तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सरा सुरा सदा के सिद्ध।
1: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर।
0: तिथे जोत महाबल सुर तिन में राम रहा परपूर।
1: तिथे सीतो सीता मैं मामाए ताके रूप ना कथने जाए।
0: ना हो मरे ना ठाके जाए जिनके राम बसे मन माहे।
1: तिथे भगत वसे के लो करे आनंद सचा मन सोए।
0: सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल।
1: तिथे खंड मंडल वर पांड जे

0: बली वेद जाप शीस न जात बिचारे
1: एते पै तो का पै भूपत अंत को नांगे पाए पधारे
0: परे सब देश किसान को बाट दो मेरे दांग नगारे
1: गुंजत गुड़ क जान क सुंदर हिंसत ही अज राजा जारे
0: भूत पवेक पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसे कह
1: वेद पुराण कते बकुरान जमीन जमान सबान के बेक
0: पौन आहार जति जतदार सबै सो विचार हजार के देख
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते करती बन एक न लेक
0: शुद्ध सपाह दुरंत तुबासु साज सना दुर जान तलेंगे
1: परिक मन परे मन में कर पर्वत पंका लेना लेंगे
0: और अरीन मरोर बवासन माते मतांगन मान मलेंगे
1: श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर अपार बड़े बरियार तारे सार तार पचैया
1: दूरत ते समलिंद बवासन माते कजान के माल मलैया
0: गाड़े गुणार से तोड़ नहार सो बात नहीं चक चार लवैया
1: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक

0: तुम पापन के बो पुंज कपेंगे
1: सात समूह पर सन फिर जग सतर सबे अवलोक चपेंगे
0: मानव इंद्र के जादर नरात जोन लोक को राज करेंगे
1: कोटि स्नान कजाधिक दान नेक सो अंबर साज परेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पद पांत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्री पद के प्रस पत्ते नर फिर न दे तरेंगे
0: आप पे हो जो दो लोचन मुंह के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
1: रात फिरे हो लिए सात समुद्रन लोक के ओ पर लोक गवायो
0: पास की ओप की आर सो बैठ गए ऐसे ऐसे सो बैस बतायो
1: साच कहो सुन ले हो समय जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो
0: आउले पहाड़ पूज तरे हो सिर का आउले लिंग करे लटकायो
1: कहूं लखे हर वाचित सा मैं काऊं पशा को सीज निवायो
0: ओ तान को पूज तहै पस को मृतान को पूजन थायो
1: गुर क्रिया और जो सब जग श्री भगवान को पेत ना पायो
0: वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह
0: पाछ दसवीं कबियो पाच बेंती चौपे हमी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए।

0: तुझो सदा हमारे पछा श्रिया तुझो करो रचा
1: राखले हो मोए राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे
0: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो परे चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए सिरजू अवतरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा
1: जवन काल कुत बनायो देव दैत दचन उपजायो
0: अद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
1: नमस्कार तिसही को हमारी सकल पर जाजने आप सवारी
0: शिवकन को सब गुण सक दियो सतरण को पल मोहबत कियो
1: काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछाणत
0: चीटी ते गुंजर स्थूला सा पर कृपा त्रेष्ट कर भूला
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: जब युद्ध करक करा कर तारा परता तर तब देह अपारा
0: जब या करक कर तो कब तुम मैं मिलते तर सब
1: जेते बदन से सबता

0: खेत में सारण तिहारी आप हाथ दे ले हो भारी मोह साई गोश्त दो ले हो
1: वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु।

0: चला चतुराई किने ना पाया,
1: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया।
0: हे माया मोहनी जिन एत परम पुलाया,
1: माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया।
0: मान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया,
1: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया।
0: हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाल,
1: एहो कुटुंब तू जी देखदा चले नाही तेरे नाले।
0: सास तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाईए,
1: ऐसा कम ले ना कीचे जितंत पछोताईए।
0: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
1: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
0: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया,
1: अंत ना पाया किन्ने तेरा अपना आप तू जाने।
0: जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने,
1: आखे तवे कै सब तू है जिन जग तो पाया।
0: नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया,
1: सुर नर मुंजन अमृत कोई दे सो अमृत गुरते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया,
1: जी जन सब तुद उपाय एक वेक परसन आया।
0: कार चुका सतगुरु भला पाया,
1: कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया।
0: भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना।
1: लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाई बोलना,
0: कन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
1: गुर प्रसादी जिनी आप तजे आहर वासना समानी,
0: कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली।
1: ज्यो तू चलावे चले स्वामी और क्या जाना गुण तेरे,
0: तू चलाहे तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे।
1: कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा ते आवे,
0: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।

0: माता पिता कुटुंब सहत सो पवित संगत सबाया
1: कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर ध्याया
1: करमी सहज ना उपजे विन सहजे सहसा ना जाए
0: सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलिना कित संजम तोता जाए
0: मन तो शब्द लागो हर से रहो चित लाए
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै सहसा इब जाए
0: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले दिनी जन्म जुए हारिया
1: एह तिसना वड़ा रोग लगा मन मनो विसारिया
0: वेदा मह नाम उत्तम सो सुने नाहीं फिरे ज्यों बेतालिया
1: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया
0: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले सतगुर ते करनी कमाणी
1: कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी
0: जन्म रतन जिनी खटिया पले सेवन जारे
1: कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले
0: सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे ता
1: सनमुख से कोई जियो रहे गुर नाले
0: चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा समाले
1: आप छड़ सदा रहे परने गुर बिन अवर ना जाने कोई
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए
1: जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे
0: कोई पुछो बिबे किया जाए
1: अनेक जूनी परमावे विन सतगुर मुक्त ना पाए
0: फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो विन सतगुर मुक्त ना पाए
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
0: जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी
1: पीओ अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी
0: नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी
0: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख बखाणी
1: हर हर नित करे रस

0: ताया
1: ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचै माया पाया
1: पर आप अमूलक है मुल ना पाया जाए
0: मुल ना पाया जाए किसे विटा रहे लोक विल लाए
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाए
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे अर

0: साकार ओए जे आके सतु है जान
1: बिना तेरी सार
0: नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार।

चढ़ चढ़ पवे अंग्यार, नानक जिन करते कारण किया सो जान करतार कोड़ी, बिन सात गुर के नैन ना पायो, बिन सात गुर के नैन ना पाया, सात गुर विच आप रखियो कर परगट सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है।

कर करे, सौ सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म बनाए थी हुक्म मने होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी, खसमे भावे सो करे, मनो चिंदिया स

अंदर सब को वेख नदरी हेठ चढ़ाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वडावर मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पठी जे

0: सच्चा सोए नानक ते मुख उजले सच्चा दरबार नानक ते मुख उजले
1: सच्चे दरबार
0: पौड़ी सबको आख अपना जिस ना

0: ऐसा हर सेविया, ऐसा हर सेविया,
1: ऐसा हर सेविया, ऐसा हर सेविया।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

भगवत वीर सकत सिमरन की, ओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरे कृपा में कोई ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवान सगल समग्रे तुमरे सूतर तारे तुम ते होए सुआज्ञाकार तुमरे गत मित तुम ही जाने नानक दास तो दया गैर दास हमारे जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाव ना जाने मेरा वाहिगुरु बोलो जी वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पाश रसवे प्रथम भगवती समरक गुरु नानक लिए त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोविंद रो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाए ते गबहादुर सिमरिया कर नावै ताय सब थाए हो सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाए हो सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां चप्पियां तप्पियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते गवाए देख के अनडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दे कमां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मे तो सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरे लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरे नाल चराए गए गुरद्वारे दी सेवा लई कुरबानी कीते धर्म निहारे सिक्खी के सा स्वासा नाल निभाए तिन्हां दिगमां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारां ध्यान धर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदकार सब सुख होवे जां जां खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रियायत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी साहेब खालसा जी के बोल वाले बोलो जे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साहिब दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल तन खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणे दे माण नेताणियां ताण न्यूटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर आप जी चरणा कमल विच अरदास है आप जी दी कृपा सदका दीवान सजे सजे हो दीवाना दे अंदर आसा की वार दे कीर्तन होए ना साहिब दे छे पौड़ियां जाप कीते गए हन बाणी पढ़दे कोलों कीर्तन करदे कोलों इक नेकहे प्रकार दे गलतियां भुल चुक दिखियां बख्शिश करनी अगत कृपा करन शुद्ध बाणी पढ़न कीर्तन गद समर्था बख्शिश करनी पढ़ी सोहनी बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदे विच वसाउणा ऐ संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटा हाजरी अपने दर ते प्रवान करन जी समूह संगतां नूं दरो करो नाम अते गुरसिखी दी दातां बख्शिश करन इस उतारी दी आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसादी दे सरगी हाजर दर प्रवान होए प्रसाद समूह संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करन कृपा करनी पवित्र बाणी विच हुकम साहिब बख्शिश करके निहाल करना अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करन सरबत दे काज रास करन सही प्यारे मेल जिन्हां मिले तेरे नाम टतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
दोहरा गया पैया काल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोर शब्द में।